0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में। आपको बता दें गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 8:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है सुबह आगमन का 8:05 पर, और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:37 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 12335 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन भागलपुर जंक्शन से रवाना होती है, तो आज मंगलवार के दिन इस गाड़ी का जो यहाँ से रवाना होने का समय है वो है सुबह 8:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9 और यह गाड़ी अपने समय से 20 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्योल इंटरसिटी, जिसका सही समय है सुबह 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 40 मिनट की देरी से भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह 11:55 यानी यह गाड़ी अपने सही समय पर आज के दिन भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म भारत से। इस गीत को आवाज़ दिया है अभिजीत श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, आइए अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम आपको एक और फिल्म में गीत सुनाते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म एजेंट विनोद से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं, अब जो कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म हाउसफुल 5 से। इस गीत को आवाज दिया है मधुबंती बाख्शी एवं सुमंतो बनर्जी ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब मुझे इस कार्यक्रम से लेना होगा इजाज़त, क्योंकि वक्त हमें इस कार्यक्रम में और आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। जाते जाते बस यही कहूँगा कि तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए। मैं केशव लेता हूँ इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
4: क्रेश,
5: क्रेश
3: और बाल्टी बॉय।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
7: सुनो ना।
1: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
7: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एसपी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's tests. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
6: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
5: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
6: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
5: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. We have more from a correspondent.
7: The fishing trawler FP Mark Ali had left the Digha Shankarpur fishing harbour in Purva Medinipur on the 2nd of July with 15 fishermen on board. Contact with the vessel was lost after the 5th of July. A joint search operation by the Indian Coast Guard, the Navy and state agencies continued for several days. The capsized trawler was finally located on Saturday afternoon off the Kakdip coast in South 24 Parganas. 9 decomposed bodies were recovered from the cabin of the vessel while 6 fishermen are still missing. Search operations were continuing in the surrounding waters. The bodies were brought to Kagdeep and later shifted to the Katapukur morgue in South 24 Parganas. Since the bodies are in the decomposed condition, DNA identification is being carried out and blood samples have been collected from the family members of all 15 fishermen. West Bengal Fisheries Minister Rajesh Mahato has assured the bereaved families that the state government will provide all possible support. The bodies will be handed over to the respective families after DNA confirmation and completion of all legal formalities. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh will inaugurate the event. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber, to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. We have a report.
4: The 4-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It will bring together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Thousands of exhibitors, over 7,000 buyers and delegates from more than 20 countries, including the United States, United Kingdom, Japan, Portugal, Spain, New Zealand, South Korea, among others, will participate in the event, highlighting strong government engagement. 8 states are partnering with the event this year, with 9 states and union territories participating as exhibitors. Bharat Tex 2026 aims to deepen international partnerships, unlock trade and investment opportunities, and strengthen India's position as a trusted partner across global textile value chains. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. United States launched strikes on Iran for the 3rd consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. U.S. Central Command CENTCOM said the strikes will continue, imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade the ability to attack innocent civilians and commercial shipping in the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump threatened to destroy Peak X Mountain, a deeply buried nuclear site near Natanz, where Western intelligence suspects Iran is building an undeclared enrichment facility. We have more from a correspondent.
8: U.S. President has announced that the United States will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. In a post on Truth Social, President Trump said the blockade would apply only to Iranian ships and vessels trading with Iran. He added the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. He assured that commercial traffic from other countries would continue to have free passage. The U.S. military said it will resume the blockade of Iranian ports from tonight. Iran has rejected the U.S. move, asserting its authority over the Strait of Hormuz. Tehran said that it will not, under any circumstances, allow the U.S. to interfere in the management of the Strait of Hormuz. Komudi Parikh, Akashvani News, Delhi.
5: An Indian crew member was killed and 6 others were wounded after 2 United Arab Emirates tankers were struck by Iranian cruise missiles while transiting through the Strait of Hormuz. UAE's defense ministry said the tankers, the Mombasa and the Al Bahia, were targeted in the southern lane of the Strait of Omani territorial waters. The dead crew member was aboard the Mombasa tanker. Of the 8 wounded, 4 were seriously injured. 6 of the wounded were Indian nationals and 2 were Ukrainian nationals. Iran-backed Houthi rebels in Yemen said they launched missiles and drones at Saudi Arabia's Abha International Airport yesterday. This comes as a retaliation for previous airstrikes on Sana'a International Airport in Yemen, which they allege were conducted by Riyadh yesterday. No casualties were reported, but the attacks marked an escalation not seen since the Saudi-led coalition struck Houthi control areas several years ago. Saudi Arabian officials did not immediately respond about the airstrikes in Yemen. Houthi military spokesman Brigadier General Yahya Sari has warned airlines against flying through Saudi airspace, saying these warnings should be taken seriously until the blockade on Sana'a International Airport is lifted. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha today. Heavy rainfall over these regions is expected to continue till tomorrow. Parts of northeast India, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal and Sikkim are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds also expected today over parts of Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Sikkim, Karnataka and Odisha. IMD also predicted heat wave conditions today at places over coastal Andhra Pradesh. Meanwhile, parts of the national capital received night showers this morning. In Odisha, the sacred Nomo Jobono Darshan of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after a fortnight-long Onosoro period. The deity is believed to have recuperated from the ceremonial illness following Snan Purnima, will be unveiled in the rejuvenated youthful form before lakhs of devotees expected to gather from across the country. The temple administration, district authorities and police have put in place elaborate security, crowd management and traffic arrangements to ensure a smooth and orderly darshan. The Nomo Jobono Darshan marks the culmination of the pre-Rath Yatra rituals and heralds the commencement of the world-renowned Rath Yatra, which will be celebrated on Thursday with the ceremonial journey of the Holy Trinity to the Sri Gundicha Temple. Indian women cricket team scripted history when they registered one of the biggest victories in the Test history against England at the Lord's yesterday. Visitors India handed a massive defeat to the host by 270 runs in the first ever women's test at Lord's yesterday to clinch the one-off Test series. Defending a daunting target of 457, India bowled out England at 186 on the final day. The win extended India's impressive record in dead ball cricket, marking the seventh victory in the last 11 tests, while preserving the unbeaten record in women's tests in England. Union Sports Minister Mansukh Mandavia has congratulated Indian women's cricket team on becoming the first ever women's team to win a test match at the Lord's. In a social media post, Mr. Mandavia said, "A commanding 270-run victory over England makes this achievement even more special." Congratulatory messages poured in for the Indian women's team, with Union Ministers Piyush Goyal, Kiran Rijiju and Jyotiraditya Scindia joining the Board of Control for Cricket in India in extending the wishes to the team. Indian men's cricket team will take on host England in the first one-day international of a three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian time. Veterans Virat Kohli and Rohit Sharma return to strengthen the Indian squad, while pace spearhead Jasprit Bumrah also makes his comeback. India will be looking to bounce back after T20 international series defeats against Ireland and England. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Hindustan Times quoting the Supreme Court says, citizenship must be determined through fair, lawful process. India's women conquer Lords with historic win, reports the Pioneer. The Asian Age, in its editorial piece, Resilience Wins at Wimbledon, says that it is said of great players that they find the way to victory, which is exactly what Jannik Sinner did in retaining his title at Wimbledon. Having dealt with an almighty scare in the first round from the virtually unknown Miomir Kecmanovic, who took him to five sets, the Italian became the first man in 48 years to survive and win the cup at London's SW19. Resilience has been the remarkable quality in Sinner's journey to a fifth Grand Slam in the final. And finally, Amar Chitra Katha set to launch Hindustan Aeronautics Limited, HAL, comic book, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
5: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
9: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुसावी मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के क्याम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 क्याम अमन मिशन्स में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ क्याम अमन मिशन्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सलामती काउंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलुकिन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजामात में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में ताउन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सैयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दीगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार राब्ता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से DNA मिलाप के लिए अहले खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों की शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार।

0: कक्ष से कामिनी ठाकुर।
1: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह

0: दल की ओर से वीणा मांडवी प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। राज्य सरकार ने नगर निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में 30 अगस्त तक विभिन्न जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दो या अधिक नगर निकायों का विलय, शहरों की सीमा का विस्तार, नए नगर निकायों का गठन तथा नगर पंचायतों को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 2025 में भी ऐसे प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमा के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। प्रदेश में इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने पटना में आयोजित इको टूरिज्म इन्वेस्टर मीट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं और स्वीकृतियां दी जाएंगी। श्री किशोर ने बताया कि यह सेल विभाग के मुख्यालय में कार्य करेगा। जलकुंभी शिल्प विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस पहल से जलाशयों में फैलने वाली जलकुंभी को मूल्य वर्धित शिल्प उत्पादों में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे आय के अवसर बढ़ने के साथ ही महिलाओं और युवाओं को टिकाऊ रोजगार मिलेगा। वहीं विभाग के सचिव कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत अगले 8 महीने में सहरसा और वैशाली के 200 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत चयनित घरों में सोलर प्लेट लगाने का काम तेजी से किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 55,000 से अधिक लाभार्थियों के रिकॉर्ड यूएलए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। श्री अमृत ने अधिकारियों को इस कार्य में लगी एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि युवक द्वारा सोशल मीडिया चैट और ऑडियो कॉल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां, संवेदनशील स्थलों की जानकारी साझा करने तथा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित सामग्री का आदान प्रदान किया जा रहा था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया बांका

0: भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 14 जुलाई राज्य के दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में सबसे अधिक 169 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और गंडक समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कल दोपहर कोसी बराज से 172,435 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: भीमनगर कोसी बराज पर पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए 20 फाटकों को खोल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण बीरपुर के मुख्य अभियंता संजीव शैलेश ने बताया कि पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध समेत सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी का डिस्चार्ज 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बागमती नदी रून्नी सैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बैरगनिया के बोहाबाड़ी में लाल निशान के ऊपर बह रही है। इधर गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। राजगीर स्थित खेल अकादमी में 25 और 26 जुलाई को राज्य स्तरीय तैराकी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 42वीं सब जूनियर और 52वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकर ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर इस ओपन चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छुक खिलाड़ी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
3: सब जूनियर एवं जूनियर स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल कराने का, ये सिलेक्शन ट्रायल प्रॉपर 50 मीटर स्विमिंग पूल में और सारे TSR के साथ आयोजित किया जाएगा। जो भी बच्चे इस स्विमिंग सिलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेना चाहते हैं वो खुद एक गूगल फॉर्म भर के रजिस्टर पहले अपने आप को कर लें।
0: अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला गली से पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पहले से ही निलंबित चल रहे थे। किशनगंज के तेरापंथ भवन में टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता की अपील की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया, कहा गंगा पथ से हरिहरनाथ मंदिर तक रोप वे की तैयारी। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, भाजपा से नीरज, जन सुराज से पीके ने भरा पर्चा, नामांकन के बाद जेजेडी प्रत्याशी गिरफ्तार, 4 घंटे बाद मिली जमानत। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दहेज हत्या में जमानत देने में सतर्कता बरतें निचली अदालत। दैनिक जागरण लिखता है, लॉर्ड्स पर भारतीय बेटियों ने रचा इतिहास, पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। आज अखबार ने लिखा है, अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई संभालेंगी जीविका दीदियां। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, मुंगेर में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3,792 करोड़ रुपए से बनी 4 लेन सड़क, NHAI ने गठित की जांच टीम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आम लोगों की शिकायतों की सीधी सुनवाई के लिए आज पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का शुभारंभ करेंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच, कुल 40 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं नामांकन पत्र। कटिहार के मूसापुर गांव से पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक युवक गिरफ्तार। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से गंडक, कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म सुल्तान से। इस गीत को आवाज़ दिया है राहत फतेह अली खान ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म टाइगर जिंदा है फिल्म का। इस गीत को आवाज दिया है विशाल शेखर ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और माफ कीजिएगा, यह गीत है फिल्म टाइगर जिंदा है से। इस गीत को आवाज दिया है आतिफ असलम ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म बॉर्डर 2 से। इस गीत को आवाज दिया है रूप कुमार राठौर एवं विशाल मिश्रा ने।

0: श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नंग में नए पुराने। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।
4: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म अनवर से। इस गीत को आवाज दिया है रूप कुमार राठौर ने। गीतकार हैं शैयद कादरी और संगीत है मिथुन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्म-ए-उर्दू। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मोहम्मद सरशार अहमद।

0: हल्की फवार जब जमीन को सैराब करती है तो सूखी मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू उठती है।
1: क्या बात है।
0: दरख्तों पर नई कोपलें फूटती हैं,
1: जी
0: जैसा
1: जी।
0: कि अभी आपका अभी का जो माहौल है,
1: जी जी
0: समाज
1: जी।
0: जो बंधा हुआ है, और फजा में ताजगी का एहसास पैदा हो जाता
1: जी,
0: है।
1: बल्कि फजा खुशगवार हो
0: हाँ,
1: जाती
0: हाँ,
1: है। जी
0: आज
1: जी
0: तो खास तौर से
1: जी हाँ जी
0: खुशगवार
1: हाँ
0: है
1: जी
0: भी।
1: हाँ जी।
0: और कुदरत हमें ये सबक देती है फैज भाई कि नश्व व नुमा के लिए मुनासिब माहौल और मुसलसल आबियारी जरूरी है।
1: जी।
0: यही उसूल इंसान और कौमों पर भी लागू होता है।
1: बेशक बेशक
0: नौजवान
1: सही।
0: किसी भी मुल्क का सबसे कीमती सरमाया होता है
1: जी
0: फैज
1: जी
0: भाई,
1: जी
0: लेकिन उनकी सलाहियतें उसी वक्त निखरती हैं
1: जी
0: जब उन्हें इल्म, तरबियत और महारत हासिल करने के मौके मुयस्सर हों।
1: बहुत सही फरमाया जावेद भाई। आपने इसी सोच को फरोग देने के लिए कल
0: हाँ, अच्छा,
1: यानी 15 जुलाई को दुनिया भर में
0: हाँ
1: आलमी यौम नौजवानान की महारत
0: हाँ हाँ
1: यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया
0: मनाया
1: जाएगा।
0: जाएगा, यानी कल
1: जी
0: 15 जुलाई को।
1: पंद्रह
0: वाह क्या
1: उस
0: बात
1: दिन का मकसद
0: है।
1: नौजवानों को इस हकीकत से आगाह करना है कि बदलती हुई दुनिया में सिर्फ तालीमी असनाद काफ़ी नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बल्कि अमली महारत, फनी तरबियत और मुसलसल सीखने का जज्बा भी कामयाबी की बुनियादी शर्त है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए तो इस तरह की टेक्निकल पढ़ाई के लिए तो
1: जी
0: हमारी
1: जी
0: सरकार
1: जी
0: भी कोशा है,
1: जी
0: बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे मंसूबे चला रही हैं।
1: जी जी जी
0: अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए भी इस
1: जी
0: तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं
1: जी जी जी
0: ताकि नौजवान हर महाज पर कामयाब हो।
1: कामयाब हो
0: और फैज
1: गया।
0: भाई देखिए, आज दुनिया तेज़ी से तब्दीली के दौर से गुजर रही है,
1: जी बेशक
0: आप महसूस भी कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, मसनू जहानत,
1: जी
0: डिजिटल जराए, ऑनलाइन कारोबार
1: जी जी
0: और
1: जी
0: नई सनअतों ने जिंदगी के अंदर, ये मैंने जिंदगी
1: क्योंकि
0: गुजारने का जो अंदाज है
1: अंदाज है वो
0: वो
1: बदल
0: बदल
1: दिया
0: दिया
1: है।
0: है।
1: जी जी जी
0: रोजगार के मौके भी पहले जैसे नहीं रहे हैं। ऐसे हालात में वही नौजवान आगे बढ़ सकता है
1: जी
0: जो नई महारतें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे,
1: सही फरमाया आपने जावेद
0: अपनी
1: भाई। जी
0: सलाहियतों को वक्त के मुताबिक निखारता रहे,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: इतना ही नहीं बल्कि नए नए चैलेंजेस को भी एतमाद के साथ कबूल करता रहे।
1: और जावेद भाई, हुनर का मफहूम सिर्फ किसी
0: बिल्कुल
1: मशीन को चलाना या कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं है। अच्छी गुफ्तगू, मुअस्सिर ज़राए इब्लाग, तख्लीकी सोच, वक्त की पाबंदी, टीम के साथ काम करने की सलाहियत, दयानतदारी, मसाला हल करने का हुनर और मुसबत रवैया भी ऐसी महारतें हैं जो इंसान को हर मैदान में कामयाब बनाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेशक।
1: और यही खूबियां एक नौजवान को न सिर्फ बेहतर मुलाजिम बल्कि बेहतर शहरी और बेहतर इंसान भी बनाती है।
0: बनाती है।
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: फैज भाई, जैसा कि अभी आपने कहा कि हुनर का जो मफहूम है आम तौर पर ये लोग समझते हैं
1: जी जी जी
0: कि मशीन को चलाना या कंप्यूटर या कोई टेक्निकल काम करना,
1: जी जी
0: लेकिन इससे आगे बढ़कर है कि अच्छी गुफ्तगू,
1: जी
0: तख्लीकी सोच
1: जी हाँ जी
0: और
1: हाँ
0: वक्त की पाबंदी
1: पाबंदी
0: भी
1: बहुत ज़रूरी है।
0: हुनर
1: जी
0: में
1: हाँ
0: शुमार होता है
1: जी
0: फैज
1: हाँ
0: भाई,
1: जी हाँ जी हाँ
0: और टीम के साथ यानी ग्रुप के साथ काम करने की सलाहियत,
1: जी
0: और इतना ही नहीं बल्कि दयानतदारी,
1: जी
0: ईमानदारी
1: जी जी
0: और
1: जी
0: किसी भी मसले का हल करने का हुनर,
1: जी
0: ये तो फैज भाई हुनर में शुमार होता है।
1: जी हाँ जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: हम लोग तो थोड़ा मशीन की चीज़ को चलाने वाले को हुनर समझते हैं, लेकिन ये बहुत यहाँ पर बहुत सामने बात आती है कि ये तमाम चीज़ें हुनर में शुमार किया जाता है। पर भाई देखिए, हमारा मुल्क जो है नौजवान आबादी के एतबार से खुशकिस्मत है।
1: जी
0: अगर उस ताकत को सही सिमत दी जाए तो यही नौजवान तरक्की की नई दास्ताना रकम कर सकते हैं।
1: बेशक बेशक
0: लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि तालीम को सिर्फ इम्तिहान और डिग्री तक महदूद न रखा जाए बल्कि उसे अमली ज़िंदगी से जोड़ा जाए।
1: जी बेशक
0: अब अमली ज़िंदगी क्या है? देखिए, फ़नी तरबियत,
1: जी
0: जदीद टेक्नोलॉजी,
1: जी
0: ज़ुबानों का इल्म,
1: जी हाँ
0: कारोबारी सलाहियत और नई राह तलाश करने की सोच,
1: जी।
0: नौजवानों को खुद कफील बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है।
1: और देही इलाके जावेद भाई, देखिए देही इलाके और छोटे शहरों में भी बेशुमार बासलाहियत नौजवान
0: हाँ,
1: मौजूद

कामयाबी के साथ साथ इज्तमाही भलाई के बारे में भी सोचें। हम अक्सर तरक्की को बड़ी बड़ी तब्दीलियों में तलाश करते हैं, हालांकि तरक्की का सफ़र हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक सच्चा लफ्ज़, एक ईमानदार फैसला, एक ज़िम्मेदार रवैया और एक साफ सुथरा माहौल, एक कानून पसंद शहरी और एक बाएख़लाक इंसान, यही वो खामोश क़ुव्वतें हैं जो किसी भी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद रखती हैं। कौमों की तामीर सिर्फ मंसूबों से नहीं होती बल्कि किरदार से होती हैं, और किरदार किसी अदारे में नहीं बनता बल्कि हर इंसान के अंदर परवान चढ़ता है। आज का माशरा हमें बेशुमार सहूलतें फराहम कर रहा है। जदीद तालीम, बेहतर मवासलाती निज़ाम, तेज़ रफ्तार रबते, ऑनलाइन खिदमात, साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। डिजिटल इंडिया जैसे इकदामात ने अवामी खिदमात को ज़्यादा मौसर और आसान बनाने की सिमत में नई राहें खोली हैं, लेकिन हर सहूलत अपने साथ एक ज़िम्मेदारी भी लाती है। अगर मालूमात तक रसाई आसान हुई है तो दुरुस्त मालूमात के इंतखाब की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। इस एहसास के साथ आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर कर रहे हैं जो वक्त के हर दौर में अहम रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी अहमियत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। बदलता माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, यह सिर्फ एक उनवान नहीं बल्कि एक इज्तमाई दावत फ़िक्र है, क्योंकि माशरा किसी एक फ़र्द, एक ख़ानदान या एक अदारे से नहीं बनता। यह लाखों इंसानों की सोच, इनके किरदार, इनके अखलाक और इनकी रोज़मर्रा की आदतों से तश्कील पाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा ज़्यादा मुनज़्ज़म हो, रियासत खुशहाल हो, मुल्क तरक्की करे, तो इस सफ़र का आगाज़ हमें अपनी ज़ात से करना होगा। एक ज़िम्मेदार शहरी की पहचान यह नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए बेहतर ज़िंदगी चाहता है, वो दूसरों के लिए भी बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि इसकी एक छोटी सी लापरवाही भी दूसरों के लिए परेशानी बन सकती है, और इसका मामूली सा अच्छा अमल भी किसी के लिए आसानी का सबब बन जाता है। हमारे रोज़मर्रा के मामूलात ही दरअसल हमारे किरदार का तारुफ़ होते हैं। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर सब्र के साथ लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार करते हैं, जब हम अवामी मकामात पर सफाई का ख्याल रखते हैं, जब हम पानी की एक एक बूंद को कीमती समझते हुए किसी गैर ज़रूरी चलते हुए नल को बंद कर देते हैं, जब हम बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं करते, और जब हम कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और जब हम सरकारी अमलाक को अपनी मुश्तरक अमानत समझकर इसकी हिफाजत करते हैं, तो बज़ाहिर यह बात बहुत मामूली काम नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो आदतें हैं जो एक महज़्ज़ब माशरे की पहचान बनती है। सफाई का ताल्लुक सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि तहजीब, सेहत और इज्तमाई शऊर से भी है। एक साफ सड़क, एक साफ स्कूल, एक साफ अस्पताल और एक साफ बाजार यह पैगाम देते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग अपने माहौल से कितनी मोहब्बत करते हैं। बदलते हुए माशरे में हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ अवामी फलाह बहबूद की मुहिमात हमारे मुल्क को साफ, सेहतमंद और तरक्की की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने सफाई और हिफ्जान सेहत के बारे में अवाम में बेदारी पैदा की है, जबकि जल जीवन मिशन हर घर तक साफ पीने का पानी पहुँचाने की एक अहम कोशिश है। अमृत मिशन के जरिए शहरों में साफ पानी, निकासी आब और बुनियादी शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने में तवज्जो दी जा रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी की मुहिम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मुस्बत कदम है। यह तमाम हुकूमती इकदामात और कोशिशें इस वक्त ज़्यादा कामयाब होंगी जब हम इन मुहिमात में हुकूमत का साथ दें, क्योंकि हुकूमत और अवाम की मुश्तरक कोशिशों से ही एक साफ और खूबसूरत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बन सकता है। इसी तरह माहौलियात का तहफ्फुज भी आज के दौर की अहम तरीन जिम्मेदारियों में शामिल है। बदलते मौसम, बढ़ती हुई गर्मी और कुदरती वसाइल पर बढ़ता हुआ दबाव हमें यह एहसास दिलाता है कि तरक्की और माहौल के दरमियान तवाजन कायम रखना लाजमी है। एक दरख्त लगाना, प्लास्टिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करना और इस्तेमाल करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो वाली सोच को बदलकर अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना, ये सारे ऐसे काम हैं जिनके नताज सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी महसूस करेंगे। बदलते माशरे में वक्त की कदर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त वो दौलत है जिसकी कमी पूरी दुनिया का कोई ख़जाना पूरी कर ही नहीं सकता। जो कौमें वक्त की पाबंदी को अपनी सकाफत बना लेती हैं, उनकी तरक्की की रफ़्तार भी दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। वक्त पर स्कूल पहुंचने वाला तालिबे इल्म, वक्त की पाबंदी करने वाला उस्ताद,
وقت پر خدمت انجام دینے والا ملازم اور وقت کی قدر کرنے والا شہری دراصل نظم و ضبط کی ایسی مثال قائم کرتا ہے جس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم

0: याद आ रहा है कि चिराग बन के जलेंगे तो रोशनी होगी, हर एक फ़र्द अपना फ़र्ज अदा करे तो बेहतरी होगी। बदलते हुए माशरे में अगर किसी एक क़ुव्वत को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है तो वो है तालीम। मगर तालीम का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर सोचने, समझने और सही फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करना है। हकीकी तालीम वो है जो इंसान को अपने लिए कामयाबी हासिल करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद बनने का शऊर अता करे। आज का नौजवान एक ऐसे दौर का नुमाइंदा है जिसमें इम्कानात की कोई कमी नहीं। इसके सामने इल्म के बेशुमार ज़राया हैं, नई टेक्नोलॉजी हैं, हुनर के सीखने के मौका हैं और दुनिया से जुड़ने के लिए बेशुमार रास्ते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि नौजवान अपनी सलाहियतों को सिर्फ ज़ाती कामयाबी तक महदूद न रखे, बल्कि उन्हें माशरे की भलाइयों के लिए भी इस्तेमाल करे। मुल्क में हुनरमंदी, ईजाद और ख़ुद इन्हसारी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन इस सोच का मजहर है कि नौजवान सिर्फ मुलाजमत तलाश करने वाले न हों, बल्कि अपनी महारत से नए मौका पैदा करने वाले भी बने। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने माशरे में एतमाद को ज़िंदा रखें। एतमाद किसी कानून से पैदा नहीं होती, बल्कि इंसान के किरदार से पैदा होता है। जब हम वादा पूरा करते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी से अपना काम अंजाम देते हैं और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करते हैं, तो एतमाद की वो फ़िज़ा कायम होती है जिसमें तरक्की के बीज आसानी से परवान चढ़ते हैं। आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है, लेकिन कुछ इकदार ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। मेहनत, दयानत, एहतराम, नज़्म व ज़ब्त, तआवुन और ख़िदमत खल्क, यह वो सतून हैं जिन पर हर कामयाब माशरा खड़ा होता है। अगर हम इन इकदार को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो बदलता हुआ माशरा हमारे लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं रहेगा, बल्कि एक रोशन मौका बन जाएगा जिसमें हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर, मजबूत और बावक़ार मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। हमें इस हकीकत को हमेशा याद रखना चाहिए कि माशरे की तामीर किसी एक दिन का काम नहीं, नहीं यह सिर्फ किसी एक अदारे या एक तबके की जिम्मेदारी है। यह एक मुसलसल सफ़र है और इस सफ़र का हर मुसाफिर अपनी रफ्तार के मुताबिक इसमें हिस्सा लेता है। कोई इल्म के ज़रिए, कोई मेहनत के ज़रिए, कोई खिदमत के ज़रिए, कोई अपनी आला किरदार के ज़रिए। हम में से हर शख्स इस मुल्क की तरक्की की दास्तान का एक किरदार है। शायद हमारा नाम तारीख की किताबों में न लिखा जाए, लेकिन हमारे आमाल ज़रूर इस माशरे की मिजाज का हिस्सा बन जाते हैं। एक उस्ताद की दी हुई अच्छी तालीम बरसों बाद किसी कामयाब इंसान की सूरत में सामने आती है। एक डॉक्टर की हमदर्दी किसी ख़ानदान के लिए नई उम्मीद बन जाती है। एक किसान की मेहनत पूरे माशरे की ग़ज़ाई ज़रूरत को पूरी करती है। एक मज़दूर के पसीने से तरक्की की इमारतें खड़ी होती हैं। एक साइंसदान की तहक़ीक मुस्तकबिल के लिए रास्ते खोलती हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी का मामूली सा अच्छा अमल भी पूरे माशरे में मुस्बत सोच को फ़रोग देता है। इसीलिए हमें किसी भी जिम्मेदारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। बसा औकात वही छोटा सा अमल जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वही किसी बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। हम इल्म को रोशनी, मेहनत को इज्जत, कानून की पाबंदी को अपनी तहजीब, सफाई को अपनी आदत, माहौल के तहफ़ को अपनी ज़िम्मेदारी और कौमी यकजहती को अपनी ताकत बनाएँ। यही वो इकदार हैं जो एक खुशहाल, पुरमन और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में हमारा हकीकी सरमाया बन सकती हैं। इस एहसास ज़िम्मेदारी और एक बेहतर माशरे की उम्मीद और ख्वाहिश के साथ मैं अपनी बात का अख्ताम इस शेर पे करना चाहूँगी कि कौमों की तरक्की का यही है असल राज, फ़र्ज निभाएं सब और बढ़े मुल्क का एजाज़।
1: जावेद भाई, अभी हम लोग सामईन को एक मकाला सुनवा रहे थे।
2: मकाले का उन्वान क्या था?
1: मकाले का उन्वान था बदलता मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ।
2: बिल्कुल।
1: और मकाला निगार थीं मोहतरमा शेफ्ता परवीन। हमें उम्मीद है कि इस मकाले ने सामईन को गौर व फिक्र के लिए नई जहतें अता ज़रूर की होंगी।
2: होंगी, लेकिन ज़रूरत है फैज भाई की इस मकाले पर जो मोहतरमा शेफ्ता परवीन ने जो बातें बताईं।
1: जी जी।
2: और बदलता मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां के सिलसिले में
1: जी
2: सबसे अहम पहलू ये कि हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या
1: क्या क्या है।
2: अगर उन जिम्मेदारियों पर हम लोग अमल करने वाले बन जाएं
1: जी
2: तो यकीनन بدلتے معاشرے میں ہم کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں
1: جی.
2: لیکن ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے.
1: جی ہاں جی.
2: ہمارے جو بھی فنکار ہیں، جو بھی شاعر ہیں، جو بھی ادیب ہیں، جو بھی

गजल का मतला समाप्त कीजिएगा। हो गया सर्द शरारा शायद, हो गया सर्द शरारा शायद, मिल गया रब का इशारा शायद, जद में तूफ़ान की कश्ती है अभी, जद में तूफ़ान की कश्ती है अभी, ढूंढती है वो किनारा शायद, और नज़रें हटती ही नहीं चेहरे से, नज़रें हटती ही नहीं चेहरे से, मिल गया उनको नज़ारा शायद, उसने मुझको है पुकारा शायद, दिल में नस्तर सा उतारा शायद, और चांद तारे गुलाब और गुलशन, चांद तारे गुलाब और गुलशन, खो गया अब ये नज़ारा शायद, खो गया अब ये नज़ारा शायद, एक मज़दूर का होता होगा, एक मज़दूर का होता होगा, दाल रोटी पे गुजारा शायद, दाल रोटी पे गुजारा शायद, और डूबने वाला ढूंढता होगा, डूबने वाला ढूंढता होगा, एक तिनके का सहारा शायद, एक तिनके का सहारा शायद, और कैसे फुटपाथ पे ये लेटा है, कैसे फुटपाथ पे ये लेटा है, भूखा सोया है बेचारा शायद, भूखा सोया है बेचारा शायद, और उनकी जुल्फ़ें हों किसी कंधे पर, उनकी जुल्फ़ें हों किसी कंधे पर, मैं करूँगा ये गवारा शायद, मैं करूँगा ये गवारा शायद, अब माँ की जूती को चूमना बिस्मिल, मगता है माँ की जूती को चूमना बिस्मिल, काम बन जाए तुम्हारा शायद, काम बन जाए तुम्हारा शायद, हो गया सर्द, हो गया सर्द शरारा शायद, मिल गया रब का इशारा शायद। दूसरी गज़ल का मतला समाप्त करेंगे। नेक काम को कभी न टाल, नेक काम को कभी न टाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेक काम को कभी न टाल, नेकी कर दरिया में डाल, बीते कितने माहों साल, बीते कितने माहों साल, फिर भी न बदला गांव का हाल, फिर भी न बदला गांव का हाल, दिल होता है पंछी सा,